0: और साथ में फंडिंग हासिल करते हैं।
1: 2024
0: के NOA की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ वही लोग हमें कॉल करें जिनकी इनकम कम है, कम गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, बैंक नहीं दे रहा। बैंक को तो कागज सबमिट कर ही देते हैं जो करने होते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट है, साफ काम साफ तरीके से। और इसलिए लाइक आप उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउस वाइफ, सिंगल मदर, अनएम्प्लॉयड है, PR है, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, इनकम कम है, पीछे ना रहिए, सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ले चुके हैं, फंडिंग लीजिए, स्किल हासिल करिए और इस मौके को मत गवाइए।
1: 4375
0: बिल्कुल जी, ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, यस, कहीं भी उनतालीस से अटेंड कर सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्रेडिट चेक नहीं है, कोलैटरल गारंटर सिक्योरिटी फ्री फंडिंग गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट आपके खाते में देती, मेरे खाते में नहीं देती है। तो इसलिए कोई कुंडी नहीं है, कोई चाबी नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है। काम होने के बाद आप लोगों ने हमारी छोटी सी फीस देनी होती है, $199 या $499। अपनी ईमानदारी से हम साफ तरीके से काम करें, लोग हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही दे देते हैं। आप मानेंगे इतने लोग आज मेरे असिस्टेंट मुझे बताती, 3 क्लाइंट तो उसके पास ही आए हैं जो कह के गए कि सर 2500 हमसे लिया, 3000 हमसे लिया, पता नहीं क्या क्या, राइट? लोग गलत तरीके से काम करते हैं मार्केट में, हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए हम सबसे आगे हैं। पीछे ना रहिए, फंडिंग हासिल करें। फैमिली ऑफ 4 को अप टू 80,000, फैमिली ऑफ 5 को अप टू 100,000, जिसमें से हाफ पोर्शन आज की रेट में ग्रांट्स है, ग्रांट्स, नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है। नंबर नोट करें, अभी कॉल करें, ऑफिस आए, 437-234-3175, 4372643175। हम अभी भी ऑफिस में ही हैं, कॉल कर लें, 437-234-3175। ऑफिस एड्रेस 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, हर एंटरी डेरी पे। 2 दिन रह गए हैं, कल का और उसके बाद दैट्स इट, फिर ग्रांट्स बंद।
1: 4372643175। सुरेश, बहुत शुक्रिया सर,
0: थैंक यू।
1: 0137, हेलो।
2: हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल
1: जी।
2: हाँ जी, मैं कहना हीगा कि ओना नु की करना चाहिदा है कि गल शेयर करनी चाहिदी अपनी वाइफ दे नाल ते जो भी है उना दी सिस्टर इन लॉ।
1: अपने हस्बैंड नू माफ कीता ते तुसी नाल रहे?
2: हां जी, मैं रही, उदो सीगा नहीं, मेरा बेबी भी नहीं हीगा उदो। मतलब कह सकते मैं एक कुड़ी ही, जिदा हुंदा ना कि हां फर्स्ट जेड़ा ताड़ी लाइफ च बंदा आएगा उनू उही ताड़ा सारा कुछ है, उस टाइप दी है ना। ते बहुत प्यार कीता ही, शिद्दत नाल कीता ही। ते ओ मैं जदों ए मेरे ते उस टाइम ते प्रेशर पिया, मतलब मैं राइट अवे फड़िया ही है ना, खुद किसी ने नहीं दस्या। उस वेले जो मेरी हालत ही, मतलब मेनू नहीं, मैं समझ नहीं पा रही, मैं किसी नु नहीं दसी। तीन लगातार इस चीज नु ना, मतलब मैं सेहा वा है ना, मैं रही भी हां नाल पर रोज रोई भी हां डिप्रेशन च, पर छड भी नहीं पाई। ओदो मैं क्या नु 6 साल हुए, अज मेरे विआह नु 9 साल हो गया, मेरा हुण एक बेटा है है ना। फिलहाल स्टेट मैं उस पर्सन नाल रहिंदी पई हां, पर हुण जाके मैं ए नहीं कहंदी, पर एक इज्जत जिदा मुक जांदी है ना बंदे दे वास्ते मन विचों, रहनी पई आ पूरे कह लो सच्चे मन नाल ही रहिंदी पई आ, पर ओ गल नहीं बणदी पई। तो मेरा की अपनी वाइफ नु दस दे, ओदा डिसीजन है गया, ठीक है, ते ओ अगर नहीं रहना चाहुंदी ते मैं मानदी आ, तुसीं कह रहे हो कि गलती नु सुधारिया जा सकदा, पर ए नवी, ए गलती नहीं हुंदी मेरे अकॉर्डिंग, ए म्यूचुअल ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨੀ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਟਰੇਅਲ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਟਰੇਅਲ ਹੀ

0: Du bist halt Job, Assas, du Assas, Hebises, Nadet, Hose, Bises, Bole, Sony Hall, Sassiakal.
1: मम्मी पापा दे वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763 Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150
1: इंडियन पंजाबी भाषा।
2: जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी ट्यूसडे। प्रोग्राम रेडियो विरासत लैके आ जिहड़ा अज मेरी ड्यूटी लगी हुई है, भाजी होनी आ जिहड़े थोड़े बिजी चल रहे सीगे, सो मेरा तुहाडा साथ है जिहड़ा 7 बजे तक रेडियो विरासत दे विच रहेगा। सो इहदे विच आपां जिथे गल्लां भी करांगे ते नाल दी नाल कुछ कु जिहड़ियां अहम खबरां ने, जिहड़ियां कुछ कु स्टोरी जिहड़ियां मैं पिछले प्रोग्राम च नहीं कर सकिया, सो इस प्रोग्राम दे विच कवर करांगा। ते मैनूं आस है उहदे विच तुसीं अपनी कोई टीका टिप्पणी करनी होवे, तुसीं अपने विचारां दी सांझ है जिहड़ी उह पा सकदे हो। स्टूडियो दे विच सांझ पाउण दा इक्को इक नंबर है, नंबर है जिहड़ा उही है 905-673-3337 905-673-3337 ते तुसीं सानूं कॉल कर सकदे हो। बाकी तुसीं सानूं डायल टू लिसन करके भी सुन सकदे हो, जां फिर तुसीं सिंपल रेडियो दे उत्ते AM 530 मल्टीकल्चरल जां फिर पंजाबी लहरां दी ऐप है जिहड़ी डाउनलोड कीती जा सकदी है, उत्ते तुसीं सानूं क्रिस्टल क्लीयर आवाज़ ते सुन सकदे हो। डायल टू लिसन करके 416-477-2040 416-477-2040 डायल टू लिसन करके सुनिया जा सकदा। ते बाकी प्रोग्राम दे विच कोई भी किसी भी विषय दे उत्ते गलबात न्यूज़ व्यूज़ सांझी करना चाहते हो जां फिर ट्रैफिक बाबत जानकारी देनी है ते नंबर 905-673-3337 905-673-3337 ते कॉल कर सकदे हो। कहिंदे मैं झूठा बंदा दुनिया दा, तुसी सच्चे हो चलो मान लिया, सब दो दो चेहरे वाले ने मैं गल नू पल्ले बन लिया, तुसी जित्ते जित मुबारक हो, तुसी जित्ते जित मुबारक हो, मैं हारियां दे विच चंगा हाँ, जे चंगे तोड़े वर्गे ने मैं माड़ियां दे विच चंगा है। मनिंदर सिंह होना ने लिखिया 17, क्या बात है जी, क्या बात है। ते दोस्तों जिवें अज 4 अगस्त है, 4 अगस्त अपने आप दे विच इतिहासिक दे चरोखियां दे विचों कई इहो जिहियां इतिहासिक घटनावां सांभी बैठा। सो अज 4 अगस्त 1914 नू पहली विश्व जंग शुरू होण नाल गदरी आगुआ ने पंजाब नू चाले पाउण बारे गदर अखबार राही अपील कीती सी, ते 4 अगस्त 1923 नू SGPC दी मीटिंग दे विच नाभा दे महाराजा रिपुदमन सिंह नू गद्दी तो हटाउण दे मसले विच दखल देण दा फैसला कीता गया। 4 अगस्त 1947 नू हजूर साहब दे महान सेवादार अते संत निदान सिंह जी दे नांदेड़ विखे अकाल चलाना होया सी, ते 4 अगस्त 1982 नू संत हरचंद सिंह लौंगोवाल दी अगवाई हेठ श्रोमणी अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा शुरू कीता सी। सो ये 4 अगस्त दिया कुछ क इतिहासिक घटनावां जो तुहाडे नाल असी जिक्र कीता। सो इस वक्त जिहड़ा पीयरसन एयरपोर्ट ते तापमान है जिहड़ा हुण इस वक्त है जिहड़ा 15 डिग्री सैलसीयस है। सो तुसी जुड़े हुए हो रेडियो विरासत दे नाल, कुछ क जिहड़ियां स्टोरीज है जिहड़ियां मैं उह कवर करन जा रहा, ते मैनूं आस है उहनां दे उत्ते तुसी अपनी टीका टिप्पणी है जिहड़ी उह करोगे, उहनां दे उत्ते तुसी अपने विचारां दी सांझ है जिहड़ी उह साडे नाल पाओगे। सो चलदे हां कुछ क जिहड़ियां खबरां ने जिन्हां वल मैं तुहाडा चाहुंदा वी ध्यान दिवावां, ते उहदे विच फिर तुसी है जिहड़ी अपनी शमूलियत है जिहड़ी उह कर सकदे हो। सो पहली जिहड़ी खबर है जिहड़े वल मैं जाना चाहुंदा आ, ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਪੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ।

आकाश खूबसूरत सभ्यता खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्क CHLO डिजिटल AM फ्रीकुएंसी राही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़ती कला वाला निरभउ निर्वैर रहेगा, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे तो चढ़ती कला तो निरभउ निर्वैर यानी कि हमेशा उस एनर्जी दे विच रहना। लोग की सोचते ने, की कहणगे, की करते ने, की समझते ने, नन ऑफ योर बिजनेस। जस्ट क्लीयर दैम कि नहीं ये चीज़ इदा नहीं। वो कहते नहीं सानू इदा लगता कि ठीक है तुहानू लगता होगा, दैट्स ओके, यू गो हैड। सो इस तरह तुसी इत्थे दुनिया नू खुश करन लई नहीं आए, तुसी खुश रहन लई आए हो। जिंदगी एक बदौलत है, उस परमात्मा का गिफ्ट है। जिस तरह तुसी किसी दे घरे तोहफा लैके जाने हो, वो तोहफे नू खोल के देखते हैं तो नक् बुल मारने शुरू कर देंगे कि ये तो चाहिए ही नहीं सीगा, ये तो साढ़े को अगे ही बहुत पिया। तुहाडा मन भर जाता कि हाँ मैं इन्नी शिद्दत इन्ने प्यार दे नाल ये तोहफा लैके आया। इसी तरह संत सिंह मस्कीन कहते हैं कि परमेश्वर ने जिंदगी दिती है तो असी उन्हूं सही ढंग ना जे माणना भी नहीं जाणदे हैगे कि किदा सही ढंग ना माणनी आ। बड़ी वड्डी अग्ञानता कि बड़े बड़े जो दीस हैं लोग तिने जा प्यापे चिंता रोग, चिंतावान विचार विकार इन सब दे विच अपनी जिंदगी नूं गवा दिता। उशो कहिंदा है कि जिंदगी एक सर्कस है, अगर तो एक आर्टिस्ट की तरह सोचोगे कि अज मेरा सैडनैस वाला डे का रोल सी, मैं रोल बहुत वधिया निभाया तो अज मेरा हैप्पीनैस वाला, अज मैं हैप्पी भी बहुत रह के दिखाऊंगा, नॉर्मल नहीं रहना तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। 9:14 स्टूडियोज़ की घड़ियां उत्ते हो चुके हैं, जिथे 4 तरीक हो चुकी है ऑगस्ट की। तो अमनदीप सिंह बैनीपाल मुखातिब है तुहाडे नाल AM 530 फ्रीकुएंसी राही इस समय पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी जिथे सानूं सुन रहे हो उत्थे तुसी सानूं सुन रहे हो इस समय। सारे जो सारनिया लंडन तो लैके 401 के उपर बैलविल तक यानी कि पूरा टोरंटो क्रॉस कर गए, किचन ऑफ वाटलो कैम्ब्रिज तो लैके छोटे व्डे सारे शहर तक एक्सकलूसिविटी यानी कि सिर्फ AM 530 फ्रीकुएंसी ही चलती है, होर कोई फ्रीकुएंसी नहीं चलती। तकरीबन 10 लाख प्लस लोग वो ने जो बाकी रेडियो नहीं सुन सकते, सिर्फ AM 530 सुनते हैं, स्पैशली इन प्राइम टाइम जो तुम घर चो बाहर निकले हो। सारे तुम अपने बिजनेस में मुहब्बत के नाल अगे लेके जाना चाहते हो, आइडिया ना अगे लेके जाना चाहते हो, आई एम विलिंग टू डू, आई एम डूइंग दिस स्टाफ फ्रॉम 15 past years। तो तुम मैं कॉल कर सकते हो 416-518-3200 सो चलिए एक सफर के बाद बड़ा खूबसूरत पर थोड़े साथ देना। स्टूडियोज़ नंबर ने 905-673-3337। जब लॉन्ग वीकेंड तो कल मैं लाइनस खोले इस टाइम पर, आई गॉट सुपर बिजी विद द ऑल ऑफ द कॉल्स, इन्ने कॉल्स आए कल, इन वधिया गल्लां कीतियां सी जिहड़े मिस कर गए, अज गल्लां कर लैने आपां। सो कल मैं थोड़े थोड़े जिहा कब दे उपर गल कीती, थोड़ी जी रियल स्टेट ऑल टुगैदर फाइनेंस नू किवें एक बटन ना कंट्रोल किया है, वह बटन दबिया जा रहा है। जिस तरह पहला पेमेंट्स तुसी कैश करते होंगे सी, अज तुसी हरेक पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हो। क्रेडिट कार्ड कंपनीज जदों किसी भी बिजनेस नू अपना सिस्टम बेचदियां ने, उस सिस्टम दे विच वो अपने हुण पैसे पाउण लग गईआं पर ट्रांजैक्शन दे पिछे। तुसी सोचदे हो वीजे च उन्हां नू पैसे कित्थों बणदे आ,

0: ਜਿਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 416-817-6500. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਲਾਈਫ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਫਰੋਮ ਟਾਪ ਚੋਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ।
1: एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। एच के मूवर्स, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704, 416-524-6704।
2: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर।
3: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
4: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे, जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन, या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन। ग्रोसरी सब तो नेड़े, इंडियन फ्रूट लैंड, 9054569900।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: Listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
2: Punjabi Versa!

0: Vision Vanities से न्यू शिपमेंट आ गई है. बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ. कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस. नई वैनिटीज भी परचेज से सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री. विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक. कॉल 9056711800 905-671-1800.
1: कंडीशंस अप्लाई.
2: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave.

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टॉलर शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा, लॉन्ग वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरों नाल तुहानू जोड़ के रखिए। 1 बजे तो बाद कुछ गीत संगीत का प्रोग्राम भी चलेगा और सुखी निजर साहब वतनों दूर प्रोग्राम तुहाडे लई पेश करनगे और मनप्रीत जी इंडिया तो खबर पेश करनगे। अज छतरी जाता रिपोर्ट सब तो पहला हाजिर है जी। 6:09 सूरज आया, 8:37 शाम नू चले जाना। मामा चंद सिंह रात नू 11:05 आएगा, 12:46 चले जाएगा। अज तापमान 28 डिग्री, सारा दिन सूरज चमकता रहेगा। कल नू मोस्टली सूरज चमकेगा 28 डिग्री। थर्सडे 29 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड। और फ्राइडे नू सारा दिन बदलवाई रहेगी, तापमान 28 डिग्री, छतरी छाता की लोड़ पेगी, बारिश पैंदी रहेगी। सैटरडे नू मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड 29 डिग्री, संडे नू भी 29 डिग्री दसे जा रहे ने। अपने स्टील एवन्यू ईस्ट ते वार्डन के नेड़े सैक्सुअली असल्ट किया गया एक लड़की नू। उस सिलसिले च पुलिस 30 to 40 साल के एक व्यक्ति की भाल कर रही है। दसिया जा रहा है एदा कद 5'8" ते रंग एदा ब्राउन है। उधर इजराइल दा चौधरी जिन्हों बीबी कहंदे आ, ओह ते डोनाल्ड ट्रंप आपस च नाराज है एक दूजे नाल जी। उधर ईरान दा युद्ध चल रहा, इधरों ये नाराज हो गए, देखने की बनता। और ट्रंप ने फरमाया कहना जां तां ईरान सरेंडर कर दे जां डील कर ले। ना उन्होंने सरेंडर करना, ना मैं तेरा डील कर, डील शायद हो जाए, डील हो जाए। वेस्ट जेट ते झंडे चक्के खड़ गए उत्थे एयरपोर्ट ते, हम स्ट्राइक पे हैं, हमारी मांगे पूरे करो, हमें और पैसे दो, हम बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। रौला रप्पा पाया, बहुत सारिया फ्लाइटा कैंसल हो गई, बहुत सारे लोग जेडे गए हुए सीगे डेस्टिनेशन ते, उन्होंने वापस आना सी, उन्होंने कितों होर टिकटा बुक कराई, होर पैसे दिते, कर करा के रौला रप्पा पूरा पिया होया। जेडे माहर लोग ने कहने तुसी आपदी होर टिकट लेके इत्थे आ जाओ, बाद च इन्हां नूं वैसे जड़दे जायो भी सानू पैसे मोड़ो, दिखवा इन्ने पैसे असीं लाए आ, जे नहीं मोड़ते फिर तुसी कोर्ट कचहरी जा सकदे हो। लेकिन कल वेस्ट जेट वाले जो स्ट्राइक आ वह खत्म हो गई, पर इन नॉर्मल होने में 2-4 दिन लगेंगे।
1: फॉर द बेस्ट डील्स इन ब्रैम्पटन कम टू एयरपोर्ट निसान एट द कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एंड क्वीन स्ट्रीट और कॉल 905-791-4900।
0: अपनी कम्युनिटी लई खुशखबरी, हीलेक्स वेलनेस फिजियो एंड रीहैब सेंटर खुल चुका है, जिथों तुसी फिजियोथेरेपी, मसाज थेरेपी, कायरोप्रैक्टर वर्गीआं सेवावां प्रोफेशनल्स वल्लों दित्तीआं जांदीआं हन। इह तकरीबन सारीआं इंश्योरेंस कंपनीआं नाल खुद डील करदे ने। काउंसलिंग सर्विस भी अवेलेबल हन। हीलेक्स वेलनेस फिजियो रीहैब 10930 गोरवे ड्राइव यूनिट CX1 गोरवे एंड कंट्री साइड दे कॉर्नर ते। ज्यादा जानकारी लई प्लीज कॉल 905-913-5256 905-913-5256 जी। हीलेक्स वेलनेस फिजियो ते रीहैब सेंटर है जी, इत्थे मसाज थेरेपी, फिजियोथेरेपी, हर तरह दी सेवावां दित्तीआं जांदीआं ने। गोरवे ते कंट्री साइड दे कॉर्नर ते है। जानकारी लई 905-913-5256 इन्हां दा नंबर है। टिक्का जंक्शन लई 6474294040 केटरिंग करानी है छोटी वड्डे फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 6474294040। तुसी इन्हां दे बैंकुएट हॉल या लॉज में छोटी वड्डी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 6474294040 647-429-4040। मॉर्गेज सोल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसी अपनी मॉर्गेज बी सी लैंडर तो हटा के ए लैंडर नाल करवानी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है, कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन ताकि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार बेस नूं बनाउण लई चाहीदे ने, मकान लैण वेले इसका भी अरेंजमेंट किया जाता है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो, 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32, 905-460-9099, 905-460-9099, 460-9099 इन्हां दा नंबर है। सज्जना, रब कोलों मंगणा छड्डो, मेहनत करो
2: ਰੱਬ ਆਪੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
3: ਪੂਰੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ?
4: ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਚੱਲੀਏ।
3: ਧਰਮ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ?
4: ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
5: ਬੇਦਾਗ ਸਰਵਿਸ।
6: ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਵਲ,
7: ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ ਬੈਸਟ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल्स।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: घोर एंड अवनीजर के इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521।
2: मैं जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले। लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस दे। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
3: रात हमें छड़ दिनी है, पर जनाब चले किथे हो?
4: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालों तो तुहाडी सेवा विच।
3: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
4: कॉल करो 905-874-9878।
5: बम्बा गया मैं जिथे जावा मुंडे कहंदे बम्बा गया।
6: नी मम्मा अर्चा कादिया गल्ला ने भाई, ओही रेस्टोरेंट ने दो चार ओही दो चार चीजा खान नु फिर भी लोकां ने 50 लाख चुक्या कने दे आउन नु।
7: अप्पू आजी एदा मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए?
6: नी मैं मर जा ओथे क्यों होणा।
7: जीटीए दा सब तो स्वादला खाना ओथे ही ता मिलदा है। सही सुनया भाई, जिन्ना सोहना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज नॉनवेज आइटम्स ले डाइन इन करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड डोबिको। स्वीट महल, ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
8: ओ आज ताँ कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी ओदो ही बनू जदो नवे अप्लायंसेस आउणगे। मैं गया लाइनिक गल, उसने वेले गड्डी चकी ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मूरे ले जा खड़ी करती।
9: जी हाँ, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस दे। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट, जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी, 905-450-2888।
10: जी हाँ दोस्तों, तुम जुड़ चुके हो रेडियो प्रोग्राम सारंग के नाल। मैं तुहाडा होस्ट एंड दोस्त राजवीर बोपर है। मेरे तो पहले तुम वतन उधर सुने, उस तो बाद बारी आई रेडियो प्रोग्राम सारंग की, फिर सुनोगे देश प्रदेश, फिर पंजाबी लहरां। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। अज के प्रोग्राम दे विच गल्लां बातां भी करांगे, गीत संगीत भी होएगा। मंगलवार दा दिन है, स्वीट महल ते सरों दा साग, मक्की दी रोटी ते लस्सी दा गिलास स्पैशल स्पैशल स्पैशल नाल बालो शाहियां लिआउणियां ना भुल्लिओ, वो जरूर ले आयो, बहुत कमाल। 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड ते स्वीट महल, स्वीट महल, स्वीट महल। नाल ही अज्ज दा प्रोग्राम है जिहड़ा मुस्कान दिओल होणा वल्लों स्पॉन्सर किया जा रहा है। तुसीं टर्म प्लैन लैना चाहुंदे हो, लाइफ इंश्योरेंस करवाउणा चाहुंदे हो, सुपर वीजा दी इंश्योरेंस करवाउणा चाहुंदे हो, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवाउणा चाहुंदे हो, बच्चों की RESP या RRSP TFSA खुलवाउणा चाहुंदे हो, तो मुस्कान दिओल 647-564-2733 ते कॉल कर सकते हो। 647-564-2733 ते गलबात की जा सकती है। सुपरविजन लई तुसीं कोटेशन लैनी चाहुंदे हो, तुहाडी जिहड़ी हैगी है कोई भी तुसीं अपनी फैमिली दे लई पैकेज कोई लैना चाहुंदे हो, तां तुसीं एक बार कॉल कर लिओ। तुहाडे हिसाब दे नाल तुहाडियां जरूरतां नूं देखदे होए बहुत वधिया एक कस्टमाइज प्लान करके तुहानूं देणगे। सो नंबर नोट कर लो, मुस्कान दिओल होणा दा लाइफ इंश्योरेंस लई सब तो वध जरूरी है इन्हां देशां दे विच, खास करके 647-564-2733 647-564-2733। ते उहनां वल्लों तुहाडा धन्नवाद भी कीता जा रिहा कि इन्ना भरमा हुंगारा तुसीं दे रहे हो। 647-564-2733। टैणा साहब वाल चलेंगे, टैणा साहब दीआं खबरां ने जिहड़ियां बिल्कुल रेडी होकर टैणा साहब हाजिर हो चुके हैं, तो इन्हां खबरों नूं स्पॉन्सर किया जा रहा खास तौर पर ग्रैंड फर्नीचर वालों। जेकर तुसीं अजे तक नहीं गए गेड़ा, तुसीं जरूर ग्रैंड फर्नीचर ते मारियो, ते नाल दी नाल इन्हां खबरों नूं स्पॉन्सर किया जा रहा सिल्वर हट वालों। सिल्वर हट का नंबर है जिहड़ा, ये नोट करके रख लो, चांदी के गहने नाल भरिया होया खचा खच स्टोर है। सो तुसीं महंगे गहने नहीं लैने चाहुंदे, वाइट गोल्ड वर्गा लगना है, पाया हुआ चांदी का कड़ा देख के तुसी कमाल दे, उन्होंने को डिजाइन पहुँचे हुए हैं। नंबर नोट कर लो, सिल्वर हट 5 चैरी क्रेस्ट ड्राइव है जी, उत्थे लोकेटड ने 416-849 1470 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਟ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜੱਗ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ 416-848-1470 ਇਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗੋਲਡਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਨਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਗੋਲਡਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਨੇ ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਗੋਲਡਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ 416-748-2116 416-748-2116 416-748-2116 ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਸੋਈ ਹੁਣ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਲਓ ਬਾਈ

Galhavi Real Estate Sale Purchase of Businesses Commercial Transaction with Power of Attorney या फिर Affidavit दी तो सोचने दी लोड नहीं इको नाम याद रखो।

0: अमन शर्मा जो अपने क्लाइंट्स नु देंदे ने एक्सीलेंट लीगल सर्विसेज। अमन शर्मा LLB बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक 25 चेरी क्रेस्ट ड्राइव यूनिट 6 ब्रैम्पटन। कॉल 905-913-2355 905-913-2355।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो ता ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीयां चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9
5: व्हेन यू अर्न पॉइंट्स ऑन एवरीडे परचेस
4: ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900।
6: जी दोस्तों जुड़े हुए हो रेडियो प्रोग्राम सारंग दे नाल ते गल्लां बातां भी चलणगियां गीत संगीत भी चलेगा। सैमी ढिल्लों साहब भी साडे नाल हाजिर हो चुके उन्हां दे नाल भी गल्लबात प्रोग्राम दे विच अगे चल के करदे आं। ढिल्लों साहब सति श्री अकाल जी आयां नूं सर की हाल चाल है?
7: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
6: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ ਸਮਝ ਰਖਵਾ ਜੀ

0: एक चक्कर लगाओ।
1: हेलो एएम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
0: टुडे विच लाइव गलबात कर ली हुणे कॉल करो 905-564-6444।
1: 905-564-6444।
0: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। चलो एएम 5:30 तो तानू माण है कनेडियन होण दा ते कनेडियन होण दे नाते सोफा मार्ट ते कैसा लेदर जड़े के इको ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार करदे ने कनेडियन मेड। अपने घर दे लिविंग रूम दी गिनती मिनती करके लेके जाओ ते हंसा सोफा तैयार करवाओ। 4 सीटा वाला 5 सीटा वाला तुहाडी अपनी मर्जी आ। 11x11 10x10 दा सोफा सेट तैयार करवा सकदे हो। इन्हां दी फैक्ट्री है 120 डेल्टा पार्क। उत्थे बहुत वड्डा शोरूम है ते पहला शोरूम है 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन। नंबर है परमजीत कौर खुरां दा 905-792-8053। 9057928053। सोफा मार्ट और कैसा लेदर इको ही कंपनी।

0: चक्कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000
4: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।
5: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसतों करवांदा यार?
6: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
5: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
6: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
7: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
6: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
7: याद रखो मोना मेंगी from insurance for you
6: 416-509-1509
7: or visit insurance for